आने के बाद सताक्षी के साथ आप हैं और मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। कई खूबसूरत बातें, कई बेहतरीन गाने इस सफर में साथ साथ इस सुबह को और भी हसीन बना रहे हैं। वैसे सुबह उठते ही एक जो विश आती है ना माइंड में कि यार ये हो जाता तो अच्छा था, या रात को सोने से पहले तब भी एक विश होती है कि यार ये मिल जाता तो अच्छा था। वो विश कोई भी हो सकती है, मतलब किसी के लिए कार हो सकती है, किसी के लिए उसका ड्रीम हाउस हो सकता है, किसी के लिए ड्रीम जॉब हो सकती है, किसी के लिए लाइफ पार्टनर हो सकता है ना, किसी पर क्रश हो और बस ये जिंदगी में आ जाए तो क्या बात है, जिंदगी बन जाए ये। लेकिन एक विश हम सबके माइंड में होती जरूर है, जिसको हर रोज रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही हम याद करना चाहते हैं, और ये याद आती भी है हमें, और वही ना आपके जीने की वजह होती है, एटलीस्ट जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक। तो उस विश को कभी भी छोड़िए नहीं, उसके लिए पैशनेट रहिए, हमेशा उसे पाने की ख्वाहिश रखिए ताकि आप जिंदगी को बहुत करीब से जीते रहे। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि वो विश पूरी होने के बाद दूसरी जिंदगी में नहीं आती, भाई ख्वाहिशें हैं, एक पूरी होती है दूसरी आ जाती है। तो फिलहाल आपकी विश के नाम ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस।

यार कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं इतनी प्रेशियस हूं, इतनी प्यारी हूं कि लोग मुझे पाना चाहते हैं। मतलब उनको लगता है कि सताक्षी मेरी जिंदगी में रहे तो कितना अच्छा है। आपको क्या लगता है, हूं मैं प्यारी? जोक्स अपार्ट दोस्तों, अपनी मियां मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन सच है ना कि कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें बांट सा लेते हैं। तो मेरे साथ भी रहो, मेरे साथ भी रहो, और हमें लगता है हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम कितने मतलब लोगों के दिल के करीब हैं। आपको एक बात बताऊं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग आपके साथ होना चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लोग हैं जो आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि आप में क्वालिटीज हैं, लेकिन कौन है जो पूरी इज्जत से आपको, खासकर रिलेशनशिप में जो लोग जाना चाहते हैं या हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यार कौन है जो आपकी वैल्यू करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सिर्फ प्यार के पीछे मत भागिए, सच्चाई को, रिस्पेक्ट को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आगे काम आती है। और मैं कहती हूँ ना हमेशा कि यार जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहां प्यार अपने आप हो जाता है, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहां अच्छा खासा प्यार भी खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी बात पर एक और गाने को एंजॉय कीजिए मेरे साथ। सुनते रहिए आपका ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

या कुछ चीजों में, कुछ सेंटेंसेस में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन समझने वाले समझ नहीं पाते। अब देखिए ना यार, कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे हैं ना जो जब फ्री टाइम होता है तो हमसे बात करते हैं, और हमें लगता है कि यार हम भी कहते हैं जब उसके पास वक्त होगा वो हमसे बात कर लेगा, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस है जिसको हम कभी ना एक्सेप्ट करते हैं ना ध्यान देते हैं। इनफैक्ट हम खुद ही कह देते हैं यार बंदे के पास जब वक्त होगा बात कर लेगा। लेकिन आप जिसके लिए इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों, तो वो आपसे बात करने के लिए वक्त निकालेगा। जैसे आपकी मदर, आप उन्हें फोन कीजिए, वो कितनी भी बिजी हो वो वक्त निकाल लेंगी आपसे बात करने के लिए। लेकिन हम बच्चे कहते हैं मम्मा जब टाइम होगा तो बात करेंगे। ये बहुत छोटी सी बात है और ये हर रिश्ते में है। आप किसी भी रिश्ते को उठाकर देख लीजिए, अपने से जुड़े, और देखिए कि किसके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं और किसको फ्री टाइम की जरूरत होती है आपसे बात करने की। बहुत छोटी सी लेकिन कीमती बात। और इसी बात पर अभी अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्पानी। जी हाँ, आपका अपना दिल से वाला चैनल।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यू नो व्हाट दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत क्रिएटिव होती जा रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव, हर रोज
1: क्रिएटिव कैसे?
0: नहीं, मैं अपने घर को कुछ अच्छा वर्क नहीं कर रही हूँ उस पर, कुछ अच्छा क्रिएशन नहीं दिखा रही हूँ वहाँ पर। एक्चुअली मैं अपने ही लिए नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जा रही हूँ और वो क्रिएशन जो है वो मेरी प्रॉब्लम्स में नजर आने लगा है। सो यस, आई एम सो क्रिएटिव, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। बिना मतलब के पंगे कभी कभी हम लेते हैं ना, बिना मतलब की प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट करते रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ध्यान दीजिए थोड़ा अपने आप पे, जहाँ पर बदलने की कोशिश करनी हो थोड़ा सा करिए, उसमें क्रिएटिविटी दिखा दिखा के और स्मार्ट मत बनिए कि एकदम परेशानियों से आप खुद ही अपनी बनाई परेशानियों से घिर जाएं। और ये ज्यादातर परेशानी जो होती है वो दूसरों के बारे में सोचकर, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दूसरों के लिए करके, दूसरों को ना कहने की चाहत जो नहीं है आप में बिल्कुल भी, कि आप नो नहीं कह सकते, या फिर जो बाउंड्री आपको खुद के लिए सेट करनी है वो आप सेट नहीं करते। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ना करके आप अपने ही लिए नई प्रॉब्लम्स डेली क्रिएट करते हैं। तो क्या करें, अभी उन्हीं प्रॉब्लम्स के नाम फिलहाल गाना सुन लें, आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, रेडियो ब्रिस्फानी 107.01 एम पर।

सो फ्रेंड्स, ये था आज सताक्षी के साथ आपका एक और बेहतरीन सा साथ इट हैपेंस में। आज एक बार फिर से इस मॉर्निंग जर्नी में आप सताक्षी के साथ थे कुछ बेहतरीन बातों और गानों के साथ। तो मेरी और आपकी बातों का ये सिलसिला, ये सफर आगे भी जारी रहेगा। जी हाँ, कल सुबह फिर से मिल रहे हैं ना हम इसी इट हैपेंस के सफर में, हमारे अपने ब्रेकफास्ट शो में। सो चलिए, आज के इस सफर से अब इजाजत ले लेते हैं, विदा ले लेते हैं इस वादे के साथ कि कल फिर से मिलेंगे, क्योंकि आपको भी बहुत सारे काम है और इस दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करनी है। तो मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करते हुए कहूंगी Have a great day and yes, of course, good morning.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ
0: ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ
3: ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗੇ
4: ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੋ ਲੋ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੂਵੀ ਮਿਸ ਕਰ
0: ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ
3: ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
5: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
6: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है इसे हम बिन कॉइन कहते हैं अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें
5: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन अ प्लेस टू कॉल होम खोजो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है A place to call home, खोजो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके A place to call home, खोजो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन
7: यार साग में कुछ दम नहीं है बिल्कुल मजा नहीं आया
8: किसी दिन घर आना असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें
7: कहाँ यार आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है
8: किस दुनिया में हो भाई क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से 99.9% पीवा मिल्क फैट से और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं
7: मुझे तो पता ही नहीं था अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ
8: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो
9: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर याद रहे 0400-644-435 पर या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर
10: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी पे आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनु सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी। आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड दी चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालां विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत दा नाम रोशन कीता है। BFTA कान्स वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग ते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित कीता है। तां मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसां जिन्हां ने विदेश विच वाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तो थोनू पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगी है। तां अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तां उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तां चल मैं तुहानू दस्सदी हां, ते जे तुहानू समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि ये फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आर जे संदेश अलग दिन आप बने हुए हूँ। इन्होंने फिल्मों के जड़ियां पूरी दुनिया के छाइया हुई ने तो ये जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ तो इस सब तो पहला नाम जो आता है वह हैगा बूंग। जी हाँ ये लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग है फिल्म का नाम। तो बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतीआं नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है किया ऑल दैट ब्रीथ्स। ये नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो, ये हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिलया है।
1: मुंडा साधुआं दा

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
5: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: अरे मोटा सदुआ।

जी देखो, वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जाण तो पहला थोड़नू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वी दस दिनी आ। तो उस फिल्म दा नाम है जी डिसिप्लिन जी है, चैतन्य वलो निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दी दुनिया ते आधारित है। की है फिल्म नू वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच FIPRESCI अवार्ड मिले हैगा, ते अल्फोंसो कुआरॉन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani se.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
12: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
13: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
12: अच्छा, वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 35 पर। याद रहे 04006444 35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: है मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और इसी के साथ आप सबको हैप्पी ट्यूसडे। जी हाँ, ट्यूसडे का दिन है, वीकडेज चल रहे हैं, काम चल रहा है, मेहनत चल रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पूरा का पूरा जो है वो प्लानिंग चल रही है। सो ये चीजें भाई मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे में करने को मिलती हैं अच्छे से, तो मैं कहती हूँ कर डालिए, क्योंकि जिनके एम्बिशन होते हैं उनको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बुरे नहीं लगते। जी हाँ, और जिनको मस्ती करनी होती है मेरी तरह उनको सब कुछ अच्छा लगता है। जी हाँ, सो आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा कभी कभी ना तुम इतनी फनी पहेलियां मारती हो कि दिल करता है कि तुम्हें कभी पहेलियां मारने ना दी जाए, ऐसा कुछ किया जाए। चलिए ठीक है, आपने गाना गाने से मना कर दिया, हमने मान लिया। आपने पहेलियां मारने से मना कर दिया, हमने मान लिया। आप बोलोगे सांस मत लो निविया शर्मा, चलिए ठीक है वो भी कर लेंगे। आप बोलोगे निविया शर्मा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है। वेल है, ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम का नाम है इवनिंग वाइब, इसमें गाने होते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं, और थोड़ा ड्रामेटिक नहीं हुए तो क्या हुए, राइट। हमारा सफर जो है वो 3 घंटे का होता है, और 3 घंटे में हमें बहुत कुछ करना होता है, थोड़ा सा ड्रामेटिक होना उसमें से एक है। तो आइए बिना किसी देर के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा होती है एक हेल्दी रिचुअल के साथ। आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छे से हमें मेंटली फिजिकली हेल्थ रखती हैं। तो आइए शुरू करते हैं उसी के साथ। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है। अभी ट्राई कीजिए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कहती हूँ अच्छा फील हो रहा है। तो फिर आइए, हमने अपना रिचुअल प्रैक्टिस कर लिया, हमने आपको बाकी भी थोड़ी सी आपकी टांग खींच ली, तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि सीधा गाने की ओर चलते हैं, क्योंकि गानों के बिना हमारा प्रोग्राम तो जल बिन मछली है, राइट। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी से एक बढ़िया से गाने के साथ शुरुआत होगी, जिसका नाम है घोड़े पे सवार, और ये है कला मूवी का गाना। कला मूवी तो बड़ी ही फिसड्डी है, लेकिन उसके गाने बहुत अच्छे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर सुनेंगे इस गाने को, करते हैं शुरुआत, इस और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, कुछ गाने इतना हैप्पी हैप्पी फील करवाते हैं ना आपको, मतलब लाइट सा फील करवाते हैं, समरी सा फील करवाते हैं। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा यू आर राइट, ये गाना समरी सा तो फील करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर विंटर है तो उतना समर हमें फील नहीं हो रहा है, तो कुछ और बताओ। चलिए ठीक है, आप बोलते हैं तो कुछ और बताना के लिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अब समर और विंटर की बात हो गई है तो जरा मौसम की बात कर ली जाए, क्योंकि मौसम भी कह रहा है अभी तो ठंड बढ़ेगी बरखुरदार। जी हाँ, तो सबसे पहले तो 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर अगर बात की जाए अभी की, तो 21.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील ऑन द अदर हैंड आपको हो रहा है 19.5 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, तो ये तो है दिन का हाल। अब रात का जानते हैं। रात को 11 डिग्री सेल्सियस यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे, और मैंने कहा था ना ठंडक बढ़ने वाली है और अच्छे से बढ़ने वाली है। सो ये है मौसम का हाल, और मतलब आज के मौसम का हाल, टेम्परेचर का हाल। अब जरा बात करते हैं बारिश की सिचुएशन की, तो ऑफकोर्स वो तो ना के बराबर थी। 10% चांसेस, तो मतलब आप ऐसा कहिए कि बादल ऐसे ही उड़ जाते हैं हवाओं में। 10% वाली जो बारिश होती है ना उसमें तो बादल दिखते भी नहीं आसमान में। और मैंने आपको कहा था कि आपको भर भर के रोशनी जो है वो मिलने वाली है, मतलब सूरज जो है वो मिलने वाला है। सो आपने क्या सोकिन किया? मैं कहती हूँ ठंड की धूप को बिल्कुल भी सेकना मत भूलिए। धूप सेकना ठंड में जो है वो सबसे अच्छी एक्टिविटी है, उसको करना जरूरी है। उसके साथ विटामिन सी कंज्यूम करना जरूरी है और अच्छी अच्छी चीजें करना जरूरी है। मतलब धूप में बैठ के आपको क्या क्या करना पसंद आता है वो बताइए। इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम फेयर, और ये है आज का हाल। अब कल की बात करें यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे की, तो कल यानी कि वेडनेसडे को 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम, और बारिश के चांसेस जो है वो 20% है, और अच्छे से सूरज निकलता हुआ मुझे नजर यहां पर आ रहा है। मतलब मैं बादल नहीं देख पा रही हूं, मतलब बारिश तो है नहीं लेकिन बादल भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। थर्सडे को ऑन द अदर हैंड आपको फिर से बारिश के लिए रेडी होना है, क्योंकि 70% चांसेस है बारिश होने के विद 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो आज का टेम्परेचर अच्छा था, कल का काफी और अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद बारिश फिर से आने वाली है। तो आज और कल मस्त तरीके से धूप सेकिए। और आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा अब क्या सेकनी, अब तो धूप जा रही है। हाँ ठीक है, मतलब आज जितनी सेक ली उतनी ठीक है, कल जो है वो जरूर सेकिए। एंड माइंड यू, हम लोगों को जो इतनी सारी विटामिन कंज्यूम करनी पड़ती है ना, विटामिन डी अगर आप धूप सेकेंगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको विटामिन डी कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको डॉक्टर ही बता सकता है, आपका हेल्थ एक्सपर्ट। बट धूप एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है आपके लिए, यू कांट बिलीव, आपकी बोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए। या यू हर्ड मी राइट। सो ये है मौसम का हाल, और यहाँ पर अब जरा सीधे चलते हैं, आपको एक मस्त सा गाना सुनाते हैं।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Asi tuhanu फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support.

0: बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं, आपको बता दें कि कैसे आप अपने फेवरेट गानों को हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। आप हिस्सा ले सकते हैं अपने फेवरेट गानों की फरमाइशों के साथ, या हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ हम ही आपको गाने नहीं सुनाते हैं, आपके गाने भी यहां पर प्ले किए जाते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या करना है आपको अपना गाना फरमाइश के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और आप जब तक भेज रहे हैं अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और मजेदार सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसको सुन के आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होने वाला है। अगर आप अपनी डाइट के साथ चीटिंग कर देते हो कभी कभार, और अगर आपकी चीटिंग चॉकलेट से रिलेटेड है, तो फिर तो बात ही बन गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप डाइट कर रहे हो, आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप चॉकलेट से दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए क्योंकि वो वेट इंक्रीज करती है, इसलिए क्योंकि उसमें मीठा होता है, और इसलिए बेसिकली चॉकलेट्स जो है वो बहुत सारी चीजें करती हैं, और लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि ये वेट इंक्रीज कर सकती हैं काफी ज्यादा। तो उनके लिए एक बात है जो मैं बताने वाली हूं, और आपको ध्यान से सुनिए क्योंकि उसके बाद आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होगा। सो चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोकोआ। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोकोआ। कोकोआ कम्स फ्रॉम अ ट्री। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोकोआ। कोकोआ कम्स फ्रॉम अ ट्री दैट मेक्स इट अ प्लांट। चॉकलेट इज अ सैलेड, मेरे दोस्त। जी हाँ, मतलब इतना कुछ तो बता दिया मैंने कि चॉकलेट जो है वो कोकोआ से आती है, कोकोआ जो है वो ट्री से आता है, और इससे जो चॉकलेट है वो एक प्लांट है, और अगर आप चॉकलेट खाते हो तो बेसिकली आप एक सैलेड खा रहे हो। मतलब आप देखो तो सही, मतलब उसका सोर्स तो देखो, दैट्स अ प्लांट। एग्जैक्टली, दैट्स अ ट्री। सो हाउ कैन यू से कि ओके हमने चॉकलेट खा ली तो हमने अपने डाइट के साथ चीट कर दिया, चॉकलेट इज नॉट गुड। यू नो, ऐसा नहीं होता है, आप सैलेड ही खा रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। जी आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा, तुम हमारे साथ साथ खुद को भी तो नहीं भरोसा दिलवा रही हो कि चॉकलेट खाना इज लाइक अ सैलेड खाना। वेल, मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना खाने में जो मजा है वो इस दुनिया में और किसी भी चीज में नहीं है। तो जो खाने का मन करे वो खा डालिए, लेकिन हाँ, अपने हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाना है वो जरूर देख लीजिएगा। हाँ, और फिर से बोलूंगी, चॉकलेट इज अ सैलेड। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त आ गया है। ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही खास लिसनर पूजा जी की तरफ से। एंड आज जिस गाने की उन्होंने फरमाइश की है वो अपेरेंटली एक हिमाचली गाना है। जी हाँ, इंडिया में हिमाचल प्रदेश का ये गाना है और वहाँ की लैंग्वेज में ये गाना है। सो आई होप आप सब इंजॉय करोगे। और ये खूबसूरत सा गाना पूजा जी की तरफ से फरमाइश किया गया है, और मेरे लिसनर कुछ फरमाइश करे और मैं ना प्ले करूँ ऐसा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच पूजा जी हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए, और ये तो बहुत ही यूनिक फरमाइश है। सो ऑफ कोर्स मेरे लिसनर्स जो हैं, मुझे लगता है आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या है। अगर आपने कभी हिमाचली गाना नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, फिर आप देखेंगे कि क्या वाओ ये लैंग्वेज कैसी है। जी हाँ, इन केस अगर आपने नहीं सुनी है। सो या थैंक यू सो मच पूजा जी, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। गाने का नाम है जिंदगी सोनी है। जी हाँ, जिंदगी सोनी है। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो, चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज हिनिविया के साथ। दोस्तों, आप में से विलियम शेक्सपियर को कितने लोगों ने पढ़ा है? जी हाँ, आप लोगों को, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, मतलब प्रीटी मच सबने ही पढ़ा होगा, शेक्सपियर को किसने नहीं पढ़ा? मतलब अगर आपने पढ़ा नहीं है तो हमें स्कूल्स में पढ़ा है, हमने लिटरेचर में पढ़ा है और हमने कभी शौकिया तरीके से भी पढ़ा है। लेकिन मैं आज आपको एक थ्योरी के बारे में बात बताने वाली हूँ। सो एक थ्योरी है जो कि काफी वायरल हो रही है इंटरनेट पर, और अगर आप भी शेक्सपियर के फैन हैं तो शायद आपको पता होगा कि उनकी वाइफ का नाम था एन हाथवे। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि हाँ ये तो हमें पता है, लेकिन एन हाथवे की एक बहुत ही फेमस एक्टर एक्ट्रेस जो हमारी जनरेशन में है, एंड या यू नो वेरी वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेविल वेयर्स प्राडा फेम एन हाथवे, मतलब एन हाथवे के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनकी वो वाइब्रेंट सी स्माइल इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उनकी स्माइल देखकर ना किसी का भी दिल जो है वो मेल्ट हो सकता है। सो एन हाथवे जो है वो विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम था। एंड गेस व्हाट, विलियम शेक्सपियर ने कहा था अपनी वाइफ को कि वी आर नेवर ट्रूली अपार्ट। या दैट्स व्हाट विलियम शेक्सपियर सेड टू हिज वाइफ। एंड गेस व्हाट, उनकी शादी के 400 साल बाद उनकी वेडिंग एनिवर्सरी वाले मंथ में एन हाथवे पैदा होती है। जी हाँ, एन हाथवे पैदा होती है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, जो कि 400 साल बाद वाली जो वेडिंग एनिवर्सरी वाला जो मंथ था उसमें। डेट सेम नहीं है बट मंथ सेम है। और फिर एन हाथवे जो है वो आगे शादी करती है, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत ज्यादा सेम दिखता है, बहुत ज्यादा लुक अलाइक है विलियम शेक्सपियर की जगह। जी हाँ, सो अगर आपने एन हाथवे के हस्बैंड को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और आप फिर विलियम शेक्सपियर की फोटो देखिएगा एंड यू विल बी लाइक Wow, the resemblance is uncanny. Literally. And you know what? जब ये थियरी मैंने पढ़ी, I was like, ठीक है, ये एक और इंटरनेट की थियरी है। But जब मैंने वो फोटोज देखी तो I was like, yeah, that does make sense. And guess what? विलियम शेक्सपियर और एन हाथवे के 3 बच्चे थे। एंड एन हाथवे जो कि एक्ट्रेस है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले प्रेगनेंसी अनाउंस किया अपने तीसरे बच्चे की। जी हाँ, सो वो अपना तीसरा चाइल्ड जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब जिसने भी ये थ्योरी बनाई, आई वाज लाइक वाओ, लाइक या, मतलब ये सब देखने के लिए, सोचने के लिए और इसको एकदम मैच करने के लिए दिमाग चाहिए। क्या इतना दिमाग मुझ में है? सो थ्योरी कोई और बनाएगा, लेकिन हम बात उसके बारे में कर लेंगे। सो आप मुझे ये बताइए, क्या आपको भी एन हाथवे के हस्बैंड की जो शक्ल है वो विलियम शेक्सपियर की तरह दिखती है या नहीं दिखती है? जरूर देखिएगा। अगर आप शेक्सपियर के फैन है ना तो जरूर देखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, और ये खूबसूरत सा गाना है कौन सी मूवी का? गेस कीजिए, ये है आला बर्फी। नाउ बर्फी अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा।

जी दोस्तों, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी. जी हाँ, सैलून्स ऑलवेज हैव हेयर ऑन द फ्लोर. जी हाँ, गैराजेस ऑलवेज हैव ऑयल ऑन द फ्लोर. बट बैंक्स, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कहाँ पैसे क्यों नहीं गिरे होते बैंक में? मतलब यार, सैलून्स में बाल गिरे होते हैं नीचे, ठीक है, फर्श पर. गैराजेस में ऑयल दिख जाता है नीचे गिरा हुआ. लेकिन बैंकों में भी तो पैसे दिखने चाहिए नीचे गिरे हुए, राइट? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल. जी हाँ, राहुल तक बात तो सही है. जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, आई वाज लाइक, सही में, जब भी आप सैलून में जाते हो, आपको नीचे बाल गिरे हुए दिख जाते हैं, गैराजेस में आपको तेल ऑयल जो है वो गिरा हुआ दिख जाता है, पर बैंक में गलती से भी आपको एक फूटी कौड़ी गिरी हुई दिखती नहीं है. क्यों क्यों क्यों ऐसा क्यों है? सिर्फ पैसे के साथ ही ये भेदभाव क्यों है? वो भी तो गिरा होना चाहिए, राइट? सो मुझे लगता है बैंक वालों को मेरी बात सुन लेनी चाहिए. और ये इल्तिजा नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा आई थिंक फीडबैक है उनके लिए हमारी तरफ से, क्योंकि गैराजेस और सैलून्स जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, बट व्हाई नॉट बैंक्स, है ना? यहाँ पर एक और गाना, एक और मजेदार सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
14: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद

0: में। लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ अगर आप GTA 6 का वेट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की तरह, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी खबर है और एक बड़ी ही यूनिक सा इंसिडेंट भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। वेल, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि GTA 6 जो है एक बहुत ही बड़ा जो है फेस्टिवल के तरीके से बन गया है, तौर पे बन गया है। मतलब लोग इसका इंतजार वैसे कर रहे हैं जैसे कि किसी फेस्टिवल का किया जाता है, लिटरली। सो GTA 6 जो है वो बहुत टाइम से आ रही है लेकिन आ नहीं पा रही है। मतलब बहुत टाइम से कहा जा रहा है कंपनी की तरफ से कि अब आएगी, लेकिन इसे पोस्टपोन किया जा रहा है। एंड गेस व्हाट, मैंने इंटरनेट पर उसके जो ओनर है यानी कि ग्रैंड थेफ्ट के जो ओनर है, जिस कंपनी से ग्रैंड थेफ्ट बनकर आती है यानी कि GTA बनकर आती है, उसके ओनर का एक इंटरव्यू देख लिया जो कि लिटरली एक इन्फ्लुएंसर कर रहे थे और उसमें उन्होंने पूछा कि ओके आई यू Are you a millionaire? So he was like, yeah, but what makes you think that I am a billionaire or I am a millionaire? So he was like, okay, आपके ऑरा से पता चल रहा है ऐसा है वैसा है. And then he tells him कि okay, have you played Grand Theft, and he was like, yeah, GTA, I have played GTA और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ GTA को. So बाकी सारे क्वेश्चन वो पूछ रहे थे कि हाउ डिड यू बिकम अ मिलियनेयर और बिलियनेयर, बट देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरी दुनिया पूछना चाहती थी वो उस इन्फ्लुएंसर ने भी पूछ लिया। बाकी सब छोड़िए सर, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कि GTA 6 आ कब रही है। एंड देन द पर्सन वॉज लाइक November 19th। या सो November 19th की डेट जो है वो दे दी गई है। एंड गेस वॉट, ये जो डेट है, ये जो डे है जिस दिन रिलीज की जाएगी, जिस दिन लॉन्च की जाएगी ग्रैंड थेफ्ट यानी कि GTA 6, उस दिन के लिए एक कंपनी, यूएस की एक कंपनी है जिसके सभी के सभी इंप्लॉयज ने छुट्टी डाल दी। और वो लिटरली इतने सारे लोगों ने छुट्टी डाल दी कि प्रैक्टिकली उस कंपनी को रन ही नहीं किया जा सकता उस दिन के लिए। तो उन लोगों को अब छुट्टी देनी पड़ गई। मतलब बेसिकली अमेरिका की एक कंपनी है, यूएस ऑटोमेटिव कंपनी, जो कि लिटरली जिसके सारे इंप्लॉयज ने ये कह दिया है कि जिस दिन GTA 6 लॉन्च होगी हम सबको छुट्टी चाहिए। सबने पहले ही छुट्टी भर दी है। सो इस चक्कर में जब देखा गया कि कितने लोगों ने छुट्टी भरी हुई है, तो सभी थे। मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने GTA 6 के लिए छुट्टी नहीं ली थी। तो बेसिकली पब्लिक हॉलीडे जो है वो उस दिन डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक हॉलीडे एग्जैक्टली नहीं होगा बट हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर करना पड़ गया उस कंपनी को, उस ऑटोमेटिव कंपनी को, जिस दिन GTA 6 लॉन्च होगी, क्योंकि लोग लिटरली क्रेजी हैं अबाउट GTA 6। एंड यू नो व्हाट, देयर इज अ सेइंग, जब भी कुछ नया होता है तो पीपल आर लाइक

What? हमें ये भी देखने को मिल गया GTA 6 से पहले कुछ और होता है नया देन दे आर लाइक ओके GTA 6 से हमें ये पहले हमें ये भी देखने को मिल गया बस GTA 6 देखने को नहीं मिल रही है सो या आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग जो है वो GTA 6 का इंतजार कर रहे हैं और क्या आप भी इतने ज्यादा फैन हो गेम्स के या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम जी हाँ एक और बहुत ही दिलचस्प चीज है GTA 6 से रिलेटेड व्हिच आई एम गोना टेल यू अबाउट लेकिन पहले हम आपको एक और मजेदार सा गाना सुनाने वाले हैं

जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं सीधा खबरों की तरफ। रुक करते हैं, खबरों की तरफ जाने का वक्त हो गया है। और यहाँ पर खबरों में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और साथ में और इनफैक्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, ये सारी की सारी बातों के बारे में, खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान ने कहा, ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका के साथ हमने मीटिंग बीच में छोड़ दी थी। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका की बातचीत खत्म हो गई है, जिसके बारे में ईरान वार्ताकार मोहम्मद बगर गलिबाफ ने जानकारी दी है। गलिबाफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से नाराज होकर बैठकर छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद अमेरिकी पक्ष ने मध्यस्थों के जरिए एक और बैठक की मांग की। ईरान के हैदराबाद कॉन्सुलेट ने गलिबाफ की एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें वो मीडिया से बात कर रहे हैं। गलिबाफ कहते हैं कि 80 मिनट की बातचीत के बाद मुझे पता चला कि ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति, हमारी वार्ता टीम और हमारे इलाके पर हमले की धमकी दी है। मैंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी से कहा कि हम यहां बातचीत के लिए आए हैं। समझौते की पहली शर्त में साफ लिखा है कि कोई धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आपके राष्ट्रपति ने धमकी दी है। ये जान लो कि हम धमकी या दबाव में बातचीत नहीं करते। गलिबाफ ने आगे बताया कि हमने बातचीत खत्म की, मीटिंग से बाहर निकल गए और वापस नहीं गए। बाद में अमेरिकी पक्ष ने मध्यस्थों के जरिए एक और बैठक की मांग की, लेकिन हमने मना कर दिया। कतरी और पाकिस्तानी मध्यस्थ हमारे पास आए और हमने उनसे कहा कि हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सीधे अमेरिकी पक्ष से नहीं। उन्होंने बताया कि चर्चाओं का नतीजा वही निकला जिसके बारे में पाकिस्तान और कतर ने साझा बयान जारी किए थे।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले इसराइल के कारण अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हो सकती थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने कहा कि अमेरिका और ईरान को क्यों बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशें लगभग नाकाम हो गई थी क्योंकि इसराइल ने लेबनान पर हमला किया था। स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में हुई अमेरिका ईरान की बातचीत का जिक्र करते हुए इसहाक डार ने कहा कि ये बातचीत कुछ दिन पहले भी शुरू हो सकती थी लेकिन लेबनान पर इजरायली हमले की वजह से सब रुक गया। बीबीसी उर्दू के मुताबिक अल अरेबिया न्यूज चैनल से बात करते हुए इसहाक डार ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच जिन मुद्दों पर आगे चर्चा होगी उनमें तीन वर्किंग ग्रुप होंगे, ईरान का परमाणु मुद्दा, पाबंदियां और फ्रीज हुए फंड और लेबनान। इसहाक डार ने यह भी कहा कि बातचीत करने वालों को कुछ मुद्दों का पर काम पूरा करने के लिए 30 दिन दिए गए हैं जबकि बड़ा समझौता 60 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत के बाद दौरान पाकिस्तान और कतर भी मध्यस्थ के तौर पर मौजूद वहां पर नजर आए थे।

वहीं पर एक बड़ी ही अजीबोगरीब सिचुएशन भारत में यानी कि इंडिया में बनी हुई थी कुछ टाइम से। वहां पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट जो है उसके पेपर लीक हो जा रहे थे बार बार। कुछ वक्त पहले मेरे लिसनर से मेरी बात हो रही थी और मेरे लिसनर्स ने भी इस बारे में प्रतिक्रिया दी। देवर लाइक कि दूध लीक हो जाता है समझ आता है, दही लीक हो जाता है समझ आता था, पानी लीक हो जाता है समझ आ जाता है, अरे तेल गाड़ी से लीक हो जाता है समझ आ जाता है, पर यहाँ तो पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। एंड आई वॉज लाइक या यू आर राइट एक्चुअली। मतलब मेरे लिसनर्स की जो पर्सपेक्टिव है वो कितना जबरदस्त है मैं ये सोचती हूँ। सो यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ नया हुआ है। सो टेलीग्राम जो है सोशल मीडिया साइट जो है वो बंद कर दी गई थी, उसको बैन कर दिया गया था कुछ दिन के लिए भारत में, लेकिन अब उसे फिर से चालू कर दिया गया है क्योंकि अपेरेंटली नीट का जो री एग्जाम होना था वो हो गया है और अब इसके बाद टेलीग्राम को फिर से शुरू कर दिया गया। अपेरेंटली इसलिए किया गया था क्योंकि नीट के एग्जाम्स जो हैं वो लीक किए गए थे टेलीग्राम पर भी। अब यहाँ पर नीट यूजी के री एग्जाम होने के बाद भारत में टेलीग्राम फिर से शुरू हो गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि उनका टेलीग्राम अकाउंट अभी भी नहीं चल रहा है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत आदेश जारी कर 22 जून तक भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। एक अन्य आदेश में प्लेटफॉर्म को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों में बदलाव करने की सुविधा बंद करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार ने कहा था कि 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। अधिकारियों का तर्क था कि टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल लीक या फर्जी प्रश्न पत्र फैलाने, धोखाधड़ी की मिलीभगत और एडिट फीचर के जरिए संदेशों के समय में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा था। दूसरी ओर टेलीग्राम का कहना था कि पूरे ऐप को ब्लॉक करना तो ना उचित था और ना ही संवैधानिक। पर चलिए फिर से जो है चालू कर दिया गया है। एंड गेस व्हाट, दोबारा जो शिक्षा हुई है, मतलब दोबारा जो ये नीट का पेपर हुआ है उसके लिए एयरफोर्स ने एग्जामिनेशन हॉल्स में जो है वो लिटरली इंडियन एयरफोर्स ने एग्जाम पेपर्स को पहुंचाया। मतलब यू नो कंट्री वाज लाइक कि ओके, इवन द मिनिस्टर्स वर लाइक, गवर्नमेंट वाज लाइक कि ओके अब ऐसा नहीं चलेगा, मतलब जो बवाल इसकी वजह से हो गया ये हो नहीं सकता दोबारा, तो ऐसा करो कि एयरफोर्स को लगा दो। मतलब एयरफोर्स को लगाना पड़े तो लगा दो, लेकिन इस बार ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। बट बात तो गड़बड़ पहले ही हो गई है, मतलब ये तो पहले ही नहीं होना चाहिए। आई मीन चाइना में गाँव गाँव होता है, साउथ कोरिया में एग्जाम होते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा जो है वो सुरक्षा में करवाए जाते हैं। मतलब उन टीचर्स को कुछ दिन पहले जो है वो किसी से मिलने नहीं दिया जाता जो पेपर मनाते हैं। जो लोग, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स को देने वाले होते हैं क्योंकि वो भविष्य मतलब डिसाइड करेगा उनका लिटरली, तो उनको हर कोई एग्जाम हॉल तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि वो लेट ना हो जाए। लेकिन इंडिया को देख लो, मतलब वहां पे पेपर ही लीक हो जाते हैं लिटरली। बट या ठीक है, इस बार जो है इन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है और ये तो उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी, मतलब इंडिया तो इंडिया बाहर भी बहुत सारी थू थू हो रही है और ऐसे में यहाँ पर ये तो चीज होनी चाहिए थी। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहां यार आज

0: आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA, from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। सो, ईरान के साथ समझौता करना है या नहीं करना है, ईरान को धमकी देनी है या नहीं देनी है, और उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी के पीछे पड़ना है और कैसे पड़ना है, उसके बाद इमैनुअल मैक्रों के पीछे पड़ना है या नहीं पड़ना है, कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बारे में उनसे पहले सबको बताना है या नहीं बताना है, या वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर ट्रंप। सो इट्स अ ट्रंप रोस्टिंग सेशन। या वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। सो आज तो मतलब हम उनके ट्वीट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके ट्वीट्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें बहुत सारा कंटेंट मिलता है उनके ट्वीट्स से, लेकिन आज तो उन्होंने इंटरव्यू ही दे दिया। सो पिछले कल ही उनका एक इंटरव्यू जारी किया गया है जो कि उन्होंने दिया है, और वहां पर उन्होंने बहुत कुछ बोला। जी हाँ, उनसे पूछा गया कि अगर आपका कोई फेवरेट लीडर होगा इस पूरी दुनिया में, तो ही वाज लाइक यू नो व्हाट, आई लव पीएम मोदी। या पीएम मोदी इज माय फेवरेट। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को ये चीज अच्छी लगती है या नहीं लगती है कि वो उनके फेवरेट है। अरे इतने फेवरेट है तो उनकी कंट्री पर टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे, ओ ये तो शायद तारिक पे तारिक, तारिक पे तारिक, तारिक पे तारिक था, राइट? बट ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, आई मीन डोनाल्ड डक की, आई मीन डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे। इज लाइक दैट यू नो इरिटेटिंग जज जो कि लिटरली तारिक पे तारिक देता रहता है, तारिक पे तारिक दे रहता है, मतलब कंक्लूड नहीं करता, कोई अच्छा फैसला नहीं लेता। या ही इज जस्ट लाइक दैट इरिटेटिंग जज। नाउ उनके इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके कौन से फेवरेट जो हैं वो लीडर है, वाज लाइक मोदी। और फिर उसके बाद उनको पूछा गया कि ओके नाउ टेल अस टू वर्ल्ड लीडर्स जिनको आपको देख के लगता है कि दे आर डूइंग रियली गुड एंड दे आर लिटरली द बेस्ट। तो ही वाज लाइक ओके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ही विल से कि ओके यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर यू आस्किंग मी, लाइक आई एम द बेस्ट, लिटरली आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। बट ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बोला फॉर अ चेंज, एंड ही वाज लाइक यू नो व्हाट, आई लाइक शी President Xi and I like PM Modi and you know what, they are the best and you know what, agar aapko Hollywood mein movie banani hai na to aapko in dono par banani chahiye, lekin you can either you know make movie on one of those and one of these। So yahan par jab unse pucha gaya ki acha if you like PM Modi to kya lagta hai aapko tariff ke bare mein, he was like you okay yeah is a good man, is a good man, you know I like him, he loves me, I love him, oh my god, you know what the amount of time he says I love PM Modi, mujhe to aisa lagta hai ki kabhi kabhi ki he is interested in PM Modi, but yeah we shouldn't talk about that but the thing is the thing

इज कि ट्रम्प से जब पूछा गया कि ओके जो दो फेवरेट और जो लगता है कि वर्ल्ड लीडर्स में सबसे अच्छा कर रहे थे, ही वाज लाइक कि पीएम मोदी एंड शी जिनपिंग, एंड उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, अगर आपको किसी पे मूवी बनानी चाहिए तो बनानी हो तो इन दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो, ऑल दो यू विल नॉट फाइंड अ गाय हु कैन प्ले देयर रोल बिकॉज दे आर दैट दैट खतरनाक. जी हाँ, दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प सेड. अब आप लोगों को लगेगा कि यहां तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को रिश्वत दी गई है पीएम मोदी की तरफ से और शी जिनपिंग की तरफ से. शी जिनपिंग भी सर पे हाथ रख के बैठे होंगे कि वाह वाह वाह वाह वाह, यहां पर हमारे कान में नाक में दम किया हुआ है, हर जगह नाक में दम किया हुआ, हर किसी की यू नो रायते में ये इंसान घुसा हुआ है और यहां पर मेरी तारीफ कर रहा है. अरे तारीफ मत कर बड़खुरदार, अच्छा काम कर. पीएम मोदी भी यही सोच रहे होंगे कि तारीफ मत कर बड़खुरदार, काम कर, अच्छे फैसले ले. पीएम मोदी तो ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा तुझे मुझसे इतना ही प्यार है बरखुरदार, तो तू थोड़े टैरिफ ही कम कर दे, मतलब यहाँ पे इतना सारा क्यों ये करता है. एंड देन डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्टेड कि यू नो व्हाट, आई लाइक पीएम मोदी, आई लव पीएम मोदी, बट यू नो व्हाट, दे वर डूइंग सम गुड बिजनेस विद अस, बट नाउ वी आर डूइंग सम गुड बिजनेस विद देम, यू नो व्हाट, नाउ इट्स आवर टाइम. हम उनसे पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, पहले वो हमसे पैसे ज्यादा कमा रहे थे, नाउ हम उनसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं. या दैट्स व्हाट ही सेड. बट ओवर एंड ऑल ट्रंप ने बहुत सारी चीजें कही. इनफैक्ट उन्होंने नितिन्याहू के बारे में बात कही, उन्होंने कहा कि नितिन्याहू को सेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है. जी हाँ, दैट्स व्हाट ही सेड. बट मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये सारी तारीफें सुन के शी जिनपिंग और पीएम मोदी को कैसा फील होता होगा, क्योंकि मैं लिटरली उनके दिमाग में घुस के ये देखना चाहती हूँ कि उनको अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, या उनका दिल करता है कि कोई पहले इसको अच्छे से धो भी पछाड़ दे दो, इस इंसान को चुप करवाओ, चुप करवाओ, इसके मुंह में मैकडोनल्ड का बर्गर ठूस दो, पर इस इंसान को चुप करवाओ, बोलने मत दो. और फिर उसके बाद ये भी सोचते होंगे कि अगर बोलने नहीं देंगे तो ये इंसान ट्वीट लिख देगा, मतलब इस इंसान को रोके तो रोके कैसे, कोई बोलने से मना करेंगे तो ट्वीट कर देगा, ट्वीट करने से मना कर देगा तो पता नहीं क्या कर देगा. सो या आई थिंक उनके दिमाग में ये सब चल रहा होता है. बट या आई वुड डेफिनेटली वांट टू नो समडे इफ आई गेट टू इंटरव्यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो आई विल आस्क हिम रियल में पर्दे के पीछे जाके कि आपको सच में फील कैसा होता है, एंड देन आई विल टेल यू, आप सबको मैं बताऊंगी. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, जैस्मिन सैंडल्स के गाने के बारे में बात होती है ना, तो मुझे लगता है कि लावा जो है वो इतना प्यारा गाना है और वो एस्थेटिकली इतना ज्यादा प्लीजिंग है, इतना ज्यादा प्लीजिंग है ना, तो ये गाने को डेफिनेटली डेफिनेटली ज्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ एक फरमाइशी गीत मैं यहाँ पर प्ले करने के लिए मतलब तैयार हूँ, और मैं इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती हूँ। गेस व्हाट, कुछ दिन पहले मेरे यही लिसनर है जिन्होंने फरमाइश की थी और मैं थोड़ी सी देरी हो गई थी ये फरमाइश प्ले करने में, और उन्होंने मुझे कह दिया कि आप निविया नहीं हो, भूलन देवी हो। और आई वाज लाइक या आप सही कह रहे हो जस्सी जी। सो जस्सी जी बहुत ही खास लिसनर हमारे, उनकी तरफ से फरमाइश आई है और बिल्कुल देर नहीं करनी है भाई, नहीं तो बोल दिया जाएगा मुझे भूलन देवी। सो यहाँ पर जो गाना उन्होंने फरमाइश किया है वो है मैंने देखा तूने देखा सबने देखा, राजेश खन्ना मुमताज की मूवी दुश्मन का ये गाना सुनते हैं। थैंक यू सो मच जस्सी जी हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए, और आपकी फरमाइश प्ले करने में तो बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते हम। सो बिना देर किए ये फरमाइश आपके लिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए 22 जून का जो दिन है वो यादगार रहेगा। सबसे पहले तो लियोनेल मेसी और एम्बापे यानी कि अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों के लिए ही मेमोरेबल दिन, क्योंकि दोनों ने ही अपनी अपनी टीम्स को जिताया और अपने अपने ग्रुप में वो टॉप पर पहुंच गए हैं। लेकिन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लियोनेल मेसी, बिकॉज एम्बापे के बारे में बात अभी हम नहीं करना चाहते, हम बात करना चाहते हैं लियोनेल मेसी, क्योंकि मेसी की फैन फॉलोइंग का कोई भी अंत नहीं है। I'm not saying कि Mbappe is not a good player, he's a very good player, but Messi is an emotion. And why am I talking about him? क्योंकि उनके लिए सिर्फ ये 22 जून का दिन इतिहासगार इसलिए नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि उन्होंने 17 गोल्स पूरे कर लिए हैं अपने फीफा वर्ल्ड कप के अभी तक के 6 जो चांसेस थे उनके, वो 6 बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो खेल चुके हैं और वो 17 गोल्स कर चुके हैं और वो पहले प्लेयर बन चुके हैं ऐसा करने वाले। उन्होंने सरपास कर दिया है जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज को, जो कि लिटरली नंबर 1 बने हुए थे, और उनके साथ टाई हो गया था लियोनेल मेसी का। लेकिन लियोनेल मेसी ने कह दिया कि ओके, टाई तो नहीं काम चलेगा, आई डोंट नो इफ आई एम गोना प्ले द अनदर वर्ल्ड कप, सो आई एम गोना डू इट राइट हियर राइट नाउ, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। सो मेसी की वो यादगार परफॉर्मेंस अगर आपने नहीं देखी है पिछले कल की, तो आप उसकी हाइलाइट्स देख सकते हैं। और आप मुझे बताइए, क्या आप भी ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेसी सिर्फ उसे ड्रॉ ना करे, उस रिकॉर्ड पे वो शेयर ना करे, बल्कि उसको तोड़े और अपना नया रिकॉर्ड बनाए? बिकॉज आई वॉज लिटरली मैनिफेस्टिंग फॉर दैट, एंड या दैट्स व्हाट ही डिड। सो या मेसी फैंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंक्लूडिंग मी, ऑल्दो

I am a more inclined person towards Ronaldo, but I have to say ki I have become a Messi fan also. I don't know. There is something with this person, about this person, that is so, so, so great. I think some kind of positivity, because you know what? He's the kind of person who's such a good player, but he thinks about other players also. Matlab, he gives balls to other players also. Matlab, he just don't think about himself. He thinks about other people, other players also. He thinks about his team. जो कि कुछ प्लेयर नहीं करते, नो मैटर वो कितने भी अच्छे हो. सो या आई हैव टू से मेस्सी फॉर द विन दिस वर्ल्ड कप. यू टेल मी, किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, और क्या आपने वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए मेस्सी को देखा? नहीं देखा तो अभी जाके हाईलाइट्स देखिए. और यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये है गाना दिल बेकरार सा है आप सबके लिए.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और तो अब बिजली का बिल सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू हो गया था पहले ही, क्योंकि पुराने गानों से हमने पहले ही शुरुआत कर दी थी। और अब मैं आपको ये कहूंगी कि यहाँ पर वक्त हो गया है आपकी फरमाइशों का, जो कि पुराने गानों से रिलेटेड है। मतलब ये सेगमेंट पुराने गानों को डेडिकेटेड है। पुराने गाने हम इसमें आपको सुनाते हैं, आपकी फरमाइशें भी पुराने गानों से रिलेटेड होती हैं, और ऐसे ही हम ये खूबसूरत सा फसाना बना देते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ, पुराने गानों वाली फरमाइशों के साथ। और यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

ओह माय गॉड, तेरा दीवाना। जी हाँ दोस्तों, और मेरे गले की खराश जो है वो जाने का नाम नहीं लेती, बट डोंट वरी, इसको हम अपना मूड नहीं खराब करने देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शर्मिला टैगोर जी। शर्मिला टैगोर से जब पूछा गया कि आपका सबसे ज्यादा फिट बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा जो है वो फेमस गाना आपको कौन सा लगता है, देन शी वॉज लाइक, मुझे लगा था कि वो कश्मीर की कली के गानों के बारे में बात करेंगी, बट उन्होंने कहा कि आई एम गोना टॉक अबाउट आराधना। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो मेरा गाना है जो कि सबसे ज्यादा हिट हुआ था, वो था रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। वो कहती हैं कि राजेश खन्ना के साथ मैंने जितनी भी मूवीज की हैं वो मेरे करियर की सबसे ज्यादा हिट मूवीज हैं। एंड ऑफ कोर्स राजेश खन्ना ऐसे ही नहीं काका है, मतलब ऐसे ही नहीं, वो बॉलीवुड के हिंदी फिल्म जगत के सबसे पहले सुपरस्टार माने गए हैं। उन्होंने कहा कि आराधना सबसे बड़ी हिट थी, और यहाँ पर वो एज थी पेयर्स की, मतलब यू नो व्हाट, पीपल वर लाइक ओके, राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर। ऑफकोर्स उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज की जो कि काफी हिट थी, बट आराधना वॉज यू नो व्हाट, अ बेंचमार्क मूवी जिसने मतलब अपने आप में एक ऐसा क्राइटेरिया सेट किया कि ओके, इसके बाद जो मूवी हिट होगी वो कितनी हिट हो सकती है, मतलब कोई हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। तो शर्मिला टैगोर कहती हैं कि मेरी सबसे हिट मूवीज में से एक है आराधना, और मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा हिट भी वही है। और यहां पर उन्होंने एक और चीज कही जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि कैसे उन्होंने नाम लिया रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। वो कहती हैं, विदाउट अटैचिंग एनी वल्गैरिटी टू दैट सॉन्ग वॉज स्टिल सो हिट, मतलब लोग उसके लिए पागल हो गए थे, क्रेजी हो गए थे, दीवाने हो गए थे। अब आप मुझे बताइए कि शर्मिला टैगोर ने तो कह दिया है रूप तेरा मस्ताना, जो उनका सबसे हिट सॉन्ग है, लेकिन आपको उनके करियर का, आपको उनकी मूवीज में सबसे खूबसूरत गाना कौन सा लगता है जो कि आपका फेवरेट है, यार यू टेल मी अबाउट इट। और यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। आई डोंट नो, इट्स बीन अ वाइल हमने इस गाने को प्ले किया है।

जब भी बात होती है फ्रेंडशिप की तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि जितेंद्र और राजेश खन्ना की फ्रेंडशिप जो है वो बहुत पहले से चली आ रही है। जी हाँ, गीत गाया पत्थरों में। जब जितेंद्र को मौका मिलता है तो वो सबसे पहले जाते हैं अपने दोस्त राजेश खन्ना के पास और वो कहते हैं कि देख भाई, मेरा ना स्क्रीन टेस्ट है और मैं ना एकदम अच्छे से इसमें काम करना चाहता हूँ, तो तू मुझे सब कुछ समझा दे। बस फिर क्या था, काका यानी कि राजेश खन्ना जो कि उनके दोस्त थे कि इसी कॉलेज में बैठकर उन्हें सिखा रहे हैं कि ऐसा करना, वैसा करना और ऐसा बिल्कुल मत करना। तो कहते कि जब मैं वहां पर स्क्रीन टेस्ट के लिए जाता हूँ तो वहां पर मैं देखता हूँ कि सब लोग जो है वो कोल्हापुरी उर्दू बोल रहे हैं और वो भाषा जो है वो काका ने मुझे बताई थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और वहां पर टू टॉप इट ऑल, वो मेरे लिए पहले ही मुश्किल हो रहा था वहां पर, लेकिन टू टॉप इट ऑल वहां पर राजश्री आ जाती है और वहां पर वो अपने पिता को कहती हैं कि देखो ना पापा, इस बंदे के नाक के बाल कितने लंबे हैं। यानी कि जितेंद्र की बात वो कर रही थी और जितेंद्र बेचारे इतने ज्यादा वहां पर ऐसा शाय फील करते हैं, वो एम्बेरस फील करते हैं कि उनको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वेल ऑफकोर्स बाकी की हिस्ट्री है कि क्या वो उसमें काम कर पाए या नहीं, बट द थिंग इज कि यहां पर ये फ्रेंडशिप भी क्या कमाल की चीज है। मतलब काका, आपने एक चीज रियलाइज की कि जितेंद्र खुद भी राजेश खन्ना को काका कहते थे, क्योंकि काका आई नहीं, राजेश खन्ना वाज द सुपरस्टार फॉर एवरीवन। मतलब जो कहता है ना कि उन जैसा सुपरस्टार कोई बन नहीं सकता, सुपरस्टार टर्म उन्होंने शुरू की थी बिकॉज एवरीवन वाज स्टार बट ही वाज द अल्टीमेट सुपरस्टार। सो जितेंद्र को सिखाया पढ़ाया पूरा और राजेश खन्ना ने अपने करियर के साथ साथ जितेंद्र को भी पूरी ट्रेनिंग दी है। जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 107.1 AM। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, गाते रहिए और आई होप आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया हो। फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड दैट्स अबाउट इट। ये खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहिंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

सौ पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। क्वींसलैंड का बजट पेश, कोयले से बंपर कमाई का अनुमान। जी हां, क्वींसलैंड के ट्रेजरर डेविड जिनत्स्की ने आज राज्य का दूसरा बजट पेश किया। हालांकि इस साल बजट में 6.17 बिलियन डॉलर का घाटा दिखाया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोयले की रॉयल्टी से राज्य को 6.9 बिलियन डॉलर की बंपर कमाई होने की उम्मीद है। वहीं क्रेडिट रेटिंग गिरने का खतरा, ट्रेजरर बोले हम हार नहीं मानेंगे। भारी कर्ज और बजट घाटे की वजह से रेटिंग एजेंसी S&P ने क्वींसलैंड की क्रेडिट रेटिंग कम होने की चेतावनी दी है। इस पर ट्रेजरर ने कहा कि पिछली सरकार की वजह से ये स्थिति बनी है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और वादों को पूरा करते हुए राज्य की फाइनेंशियल स्थिति को सुधारेंगे। वहीं ब्रिस्बेन में आज मनाया जा रहा है ओलंपिक डे। आज 23 जून को पूरी दुनिया में ओलंपिक डे मनाया जा रहा है। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने इसके लिए खास तैयारियां भी की हैं। वहीं ल्यूकेमिया फाउंडेशन ने सरकार के फैसले को अधूरा बताया। ल्यूकेमिया फाउंडेशन ने क्वींसलैंड सरकार के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें क्षेत्रीय मरीजों के लिए फ्यूल सब्सिडी को 34 सेंट से बढ़ाकर 45 सेंट प्रति किलोमीटर किया गया है। वहीं क्वींसलैंड के एक शख्स ने आखिरी मिनट में जीती 20 मिलियन डॉलर की लॉटरी। किस्मत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वींसलैंड के एक शख्स ने पावरबॉल लॉटरी बंद होने से ठीक कुछ मिनट पहले टिकट खरीदा था और उनकी 20 मिलियन डॉलर की बंपर लॉटरी लग गई। इसके साथ ब्रिस्बेन की स्टोरी ब्रिज आज चमकेगी नीले और सुनहरे रंग में। जी हाँ, अगर आज शाम आप बाहर निकल रहे हैं तो ब्रिस्बेन की मशहूर स्टोरी ब्रिज और किंग जॉर्ज स्क्वायर का नजारा जरूर देखिएगा। ओलंपिक डे के जश्न के साथ साथ खाली स्लॉट्स में आज ये ऐतिहासिक जगहें ब्रिस्बेन शहर के ऑफिशियल कलर्स यानी नीले और सुनहरे रंग की लाइट से जगमगाएंगी। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका का भारत के लिए बड़ा डिफेंस पैकेज। भारत और अमेरिका की दोस्ती आज एक कदम और आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने भारत के M777A2 अल्ट्रा लाइट हाविट्सर तोपों के लिए 230 मिलियन डॉलर के बड़े स्पॉट बैक पैकेज का ऐलान किया है। वहीं लखनऊ बिल्डिंग हादसे में एक्शन, 4 गिरफ्तार। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल एक कमर्शियल बिल्डिंग में जो भीषण आग लगी थी जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, उस मामले में आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिल्डिंग के 4 मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम के परिवार पर जमीन विवाद के आरोप। एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के परिवार ने उज्जैन में करीब 168 एकड़ जमीन खरीदी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जमीन के आसपास ही सरकार ने बाद में नए रोड प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे जमीन के दाम बढ़ गए। इसके साथ केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा, राजनीति के गलियारे से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज सुबह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं आंध्र प्रदेश की फार्मा कंपनी में आग, 2 की मौत। जी हां, आंध्र प्रदेश के अनाकालपल्ली में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी की दक्षिण एनर्जी इंडस्ट्रीज यूनिट में अचानक आग लग गई। इस हादसे में वहां काम कर रहे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ऑर्गन डोनेशन में भारत ने बनाया रिकॉर्ड। हेल्थ सेक्टर से एक बेहद सकारात्मक खबर है। भारत में अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ी है और देश ने सबसे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड इसमें बनाया है। वहीं अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का इस्तीफा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे देकर सबको चौंका दिया है। वहीं यूएस और ईरान के बीच बातचीत, तेल प्रतिबंधों में ढील। काफी समय से चल रहे तनाव के बीच अमेरिका और ईरान ने स्विट्जरलैंड में अपनी टेक्निकल बातचीत पूरी कर ली है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर लगे तेल प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। वहीं कतर गैस प्लांट ब्लास्ट में 12 भारतीयों की मौत। कतर के रास लफान गैस प्लांट में हुए धमाके को लेकर एक बहुत दुखद खबर आई है। इस ब्लास्ट में मारे गए लोगों की पहचान हो गई है और आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि जान गंवाने वालों में 12 भारतीय नागरिक शामिल थे। वहीं इंडोनेशिया का बड़ा आर्थिक फैसला, ड्यूटी हटाई। इंडोनेशिया सरकार ने साल 2026 के दूसरे हिस्से के लिए अपने नए इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है। देश में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एलपीजी, प्लास्टिक के कच्चे माल और हवाई जहाजों के स्पेयर पार्ट्स पर से इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया है। वहीं जापान ने वीजा और रेजिडेंसी फीस 5 गुना बढ़ाई। अगर आप जापान जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जापानी सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से वीजा और रेजिडेंसी चार्जेस में सीधे 5 गुना की बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं लाओस और कंबोडिया का चीन के लिए नया ट्रेड रूट। एशिया व्यापार को मजबूत करने के लिए लाओस और कंबोडिया ने हाथ मिलाया है। दोनों देशों ने सीमा पर एग्रीकल्चर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कंबोडिया से वियतियानी होते हुए चीन का तक एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026, अल्जीरिया की धमाकेदार जीत, जॉर्डन बाहर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप जे के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में अल्जीरिया ने शानदार वापसी करते हुए जॉर्डन को 2-1 से हरा दिया। वहीं मेसी ने रचा इतिहास, बने ऑल टाइम टॉप स्कोरर। फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले लियोनेल मेसी ने एक और नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ हुए मैच में अर्जेंटीना ने 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं ग्रुप जे में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना टॉप पर। फीफा वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ग्रुप जे में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार 2 मैच जीतकर 6 अंकों के साथ सबसे ऊपर है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस नॉकआउट स्टेज में पहुंचा। एक और बड़े मुकाबले में फ्रांस की टीम ने अपना दबदबा साबित किया है। फ्रांस ने इराक को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। वहीं ईरान की टीम वर्ल्ड कप की रेस में बरकरार। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान की नेशनल फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। अपने पिछले मैच में कड़े मुकाबले के बाद ईरान ने मैच को ड्रॉ पर रोका और टीम अब भी नॉकआउट स्टेज की रेस में बनी हुई है। वहीं केप वर्दे की ऐतिहासिक कामयाबी के करीब, जी हां, इस बार वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रही केप वर्दे की नेशनल फुटबॉल टीम ने सबको हैरान कर दिया है। अपने शानदार खेल की बदौलत केप वर्दे की टीम इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गई है और उनके अगले राउंड में जाने की उम्मीदें बहुत मजबूत हो गई हैं। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed, participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: स्वेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
0: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। That's 3804-3818.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। आज ही कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: I. Hey, yo.

हेलो मादाब जी, सत श्रीकाल जी। हाँ, तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे तो रेडियो स्टेशन रेडियो बरसानी 107.1 एफएम ते जी आर जी संदेश शौलक दे नाल बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं सिलगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बरसानी 107.1 एफएम साडा फेसबुक पेज है जी, ते bersani@bersani.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसीं उह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे नाल गल्लां बात करनिया। तो चको तो अपना फोन से साथ गल बात करो, है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं तो आनी हूँ, बस हुणे आनी हूँ वापस। उन्होंने समा तुसी सुने जी गीतां नूं इंजॉय भी करो।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही। मैनु सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत का नाम रोशन किया है। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग ते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसा जिन्होंने विदेश विच वाही वटोरी हैगी है। शायद बहुत बारे तो थोनू पता होना बहुत बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज है तो अदर लैंग्वेज जी आती हैगी है तो उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तो चल मैं तुहानू दसदी हां जे थोनू समझ आती हुई तो जरूर देखियो क्योंकि फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिन बने हुए हुणे ना फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाईयां हुईयां ने, तां इह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हां तां इस विच सब तों पहला नाम जिहड़ा आउंदा है उह हैगा बूंग। जी हाँ, यह लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग है फिल्म का नाम। बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है, क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: डायमंड।

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 FM ते जी आर जी संदेश शौलक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म जड़ी हैगी है उसका नाम है जी ऑल वी इमेजिन इज लाइट। पायल कपाड़िया की फिल्म हैगी है ते फिल्म 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल विच ग्रैंड पिक्स जीती सीगी। कैन फिल्म फेस्टिवल दे विच कानी कुशृति अते दिव्या प्रभा इस विच लीड रोल दे विच है ते मुंबई दिया दो नर्सां दी इमोशनल यात्रा दिखाउंदी है कि है। गोल्डन ग्लोब विच दो नॉमिनेशन बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ते बेस्ट डायरेक्टर ते गोथम अवार्ड्स NYFCCA LA शिकागो आदि तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अवार्ड जीते ने। बाराक ओबामा ने इस नू 2024 दी टॉप फिल्म चुनिया सीगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्तवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिना से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्ढा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्ढा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है कि ऑल दैट ब्रीथ्स। ए नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो, ए हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।
1: मुंडा साधुआ का

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
5: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar. Connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलनगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी देखो, वेड़ा तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जाण तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वह भी दस ही दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिप्लिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित है। की है फिल्म नू वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच एफ आई PRESCI अवार्ड मिले हैगा, ते अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा की कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम साढ़े रेडियो बिरसोनी 101 FM सा फेसबुक पेज है जी, बिरसोनी @bersoni.com सा ईमेल आई डी है जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना पर सा गलबात जरूर करो, है ना। तो बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखे करो। सत श्रीकाल।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ताँ जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है आध्यात्मिक धार्मिक सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेदवाणी।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
11: नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अदाब एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी. उम्मीद करती हूं आपकी सुबह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू हुई होगी. चाय की खुशबू हो, कॉफी का कप हो या फिर ऑफिस की तैयारी, अगले कुछ पल हम साथ बिताएंगे कुछ खबरों, कुछ यादों और फिर कुछ मनोरंजन के साथ. आपने कहीं नहीं जाना है, बस अपनी दोस्त आरजे चांदनी जैन को सुनना है चांदनी के सफर में, क्योंकि ये सफर बेहतरीन बनने वाला है. आपकी सुबह बहुत ही प्यारी गुजरने वाली है, तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये गीत रेडियो ब्रिसवानी में.

तो आइए जी इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की कुछ ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया की कुछ खबरों की अपडेट के साथ। ब्रिस्बेन में आज सुबह काफी ठंड महसूस की गई है। इस हफ्ते की सबसे ठंडी सुबहों में से एक रही है, जहां पर टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल से सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए $110 मिलियन के रोड रीसर्फेसिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिटी की मेजर रोड्स को स्मूथ और सेफ बनाना है। तो ये काफी अच्छी अपडेट है क्योंकि ब्रिस्बेन में डेवलपमेंट हो रही है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्वींसलैंड गवर्नमेंट ने अपना नया बजट जो है वो पेश कर दिया है और इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर बड़े निवेश की घोषणा की गई है। साथ ही ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए भी फंडिंग एलोकेट की गई है। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने ऑपरेशन स्मूथ के तहत सिटी की कई बिजी रोड्स को अपग्रेड और रिसर्फेस करने के लिए $110 मिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। इससे ट्रैफिक और रोड सेफ्टी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। क्वींसलैंड में ठंडी सुबहें जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन ड्राई विंटर कंडीशंस देखने को भी मिल सकती है, जबकि सुबह और रात का टेम्परेचर काफी नीचे भी जा सकता है। तो आप बस अपना ध्यान रखिए। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। तो आइए इसी के साथ ब्रिस्बेन की एक और खबर जानते हैं। फॉर्मर रग्बी स्टार जॉर्ज बर्गिस ने ब्रिस्बेन में एक व्यक्ति की जान बचाने में काफी मदद की है। उन्होंने और उनके साथी ने तुरंत एक्शन लेकर एक संभावित हादसे को टाल दिया। इस घटना की ऑस्ट्रेलिया भर में काफी चर्चाएं हो रही है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत। बने रहिए मेरे साथ चांदनी के सफर प्रोग्राम में।

हाँ जी, वेलकम बैक टू रेडियो ब्रसवानी में। तो दोस्तों, आइए फिर थोड़ा सी चर्चा करते हैं फिल्मों की। दोस्तों, आपको वो डायलॉग याद है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जी हाँ, राजेश खन्ना की ये फिल्म आनंद सिर्फ एक फिल्म नहीं थी दोस्तों, बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया थी। आज भी ये डायलॉग सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि इस फिल्मों में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था, देखने को भी मिलता था, क्योंकि यहाँ पर हम जिंदगी को कैसे जिया जाता है ये नजरिया हमारा बदल जाता है। पुरानी फिल्मों में इतनी दम होती थी कि वो हमें शिक्षा जरूर देती थी। वहीं पर अगर हम बात करें अमर अकबर एंथनी, जी हाँ, तीन भाइयों की कहानी थी, शानदार गाने और अमिताभ बच्चन का वो मशहूर आईने वाला सीन। उस दौर में तो दोस्तों लोग फिल्म देखने के बाद हफ्तों तक उसके गाने गुनगुनाते रहते थे, माई नेम इज एंथनी। जी हाँ, ये वाला गाना बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और आज भी लोग इसे सुनते हैं तो बोर नहीं होते। तो आइए चलिए सुनते हैं अगला गीत रेडियो ब्रसवानी में।

हाँ जी, वैसे दोस्तों मुझे याद आया, ये बातें करते करते जरा आप बताइए, आपने पहली फिल्म थिएटर में कौन सी देखी थी? क्या वो अमिताभ बच्चन की थी, राजेश खन्ना की थी, या फिर धर्मेंद्र पाजी की थी, या फिर हेमा मालिनी की? कोई सुपरहिट फिल्म जो ऐसी आपने देखी हो जो आपको हमेशा याद रहे, तो हमें फटाफट से आप मैसेज करके बता सकते हैं। इतनी देर में आप सुनिए ये गीत रेडियो ब्रिस्वानी में।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रसवानी में। तो दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे ना कि चांदनी आप सभी को बस पुराने गाने सुनाती रहती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। जी हाँ, उस दौर के गानों में ना कुछ अलग ही जादू था। ना ऑटो ट्यून थी, ना भारी भरकम म्यूजिक था, बस दिल से निकली आवाज और सीधे दिल तक पहुँचने वाले वर्डिंग्स थे। जी हाँ, वही अगर हम बात करें किशोर कुमार जी की, मोहम्मद रफी जी की आवाज, लता मंगेशकर जी के वो सुर और आशा भोसले जी के वो संगीत, ये सारे गीत आज भी हर पीढ़ी को जोड़ते हैं। चाहे हम प्यार का इजहार की बात करें, चाहे हम नफरत से प्यार में कन्वर्ट करने की बात करें, हर रिश्तों को टूटने से बचाने की बात करें, तो इन सभी दिग्गजों के ये जो गाने हैं, इनके बोल है, हर रिश्तों को मजबूत बनाते थे। और आज भी कहीं ना कहीं हम पुराने गानों को ही सुनते हैं अपने यादों को याद करने के लिए। क्यों जी, आप सभी सहमत है ना? तो मैसेज करके जरूर बताएं और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है ये भी बताएं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रसवानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में। तो दोस्तों, ये थी आज की ब्रिस्बेन की न्यू अपडेट्स, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू बातें और बहुत सारी खबरें जो आप सभी ने जानी, और मीठी मीठी यादें, पुरानी फिल्मों को याद करके हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत की है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और रेडियो ब्रिस्बेन सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो ब्रिस्बेन के साथ जुड़े रहना मतलब अपने दिन को लाजवाब बनाना। जी हाँ, और आपसे अब फिर मुलाकात होगी एक नए दिन और नए जज्बे और नए गीतों के साथ। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और जाते जाते सुबह की शुरुआत अपनों की बात और यादों के साथ। आप बजुड़े रहिए रेडियो ब्रिस्बेन में। मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नाटो के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप ने बताई ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के इस्तीफे की वजह। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के अचानक इस्तीफे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने स्टारमर की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वो नाटो के मामलों में अमेरिका के लिए सहयोगी रुख नहीं रख रहे थे। हालांकि अपने बयान के आखिर में उन्होंने स्टारमर के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। आतंकवादियों को पनाह देने का लंबा इतिहास, जेडी वेंस ने पाक के लिए दिखाया प्यार तो बर्ग से अमेरिकी सांसद। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस्लामाबाद के प्रति प्यार जताने वाले बयानों के बीच रिपब्लिकन सीनेटरों ने कतर और पाकिस्तान के आतंकवादियों को पनाह देने के इतिहास की ओर इशारा किया है। सीनेटर रिक स्कॉट ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि अब तक सभी को ये साफ हो जाना चाहिए कि हमारे असली दोस्त कौन हैं। कतर और पाकिस्तान का आतंकवादियों को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है और अभी वो सार्थक शांति लाने की बजाय ईरान के दशकों पुराने आतंकी अभियान को बढ़ावा देने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सालों के बजाय महीनों में बदल जाएगा माहौल, एआई को लेकर फाइव आईज की बड़ी चेतावनी। इंटेलिजेंस अलायंस फाइव आईज ने एक अनोखी चेतावनी जारी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली जनरेशन सालों के बजाय कुछ ही महीनों में साइबर सिक्योरिटी के माहौल को पूरी तरह बदल सकती है और सरकारों, बिजनेस और कॉरपोरेट लीडर्स से साइबर रेजिलियंस को तुरंत प्रायोरिटी देने की अपील की है। ये चेतावनी फाइव आईज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल के एक संयुक्त बयान में दी गई। ये काउंसिल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों का एक समूह है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को चीन का खुला समर्थन, डोभाल से मुलाकात के बाद बोले वांग यी, हम सपोर्ट के लिए तैयार। चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन और भारत पड़ोसी देश हैं और ग्लोबल साउथ की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए उनके बीच बेहतर सहयोग होना चाहिए। बता दें कि 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। तमिलनाडु अमोनिया गैस लीक हादसा, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 9, जीवन और मौत से लड़ रहे 69 मजदूर। तमिलनाडु के तिरुवल्लुरु जिले में एक प्राइवेट सी फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट कंपनी में अमोनिया गैस लीक होने से एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक और मजदूर की मौत की पुष्टि की है। इसे राज्य के हालिया सालों में सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक माना जा रहा है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: चलिए, वे आर एवरीबॉडी टुडे?
1: आई डोंट नो, एवरीवन्स अस्लीप आई थिंक.
0: कोल्ड
1: हे
0: मे बी
1: एवरीवन्स अंडर द
0: ब्लैंकेट्स.
1: ओ दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग.
0: या
1: वेदर आई शुड प्ले इट.
0: प्ले इट, प्ले इट.
1: बट इट्स 7:31.
0: या
1: And it's time to
0: say
1: happy birthday if it's your birthday today. And a happy anniversary if you're celebrating your anniversary today. Yep.
0: Uh-huh.
1: But this song came to mind because of the cold weather.

0: चादर पर कुछ बातें कर रहे थे हम. ओ, आज का विचार ना. कहते कि जिंदगी में रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं. तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा.
1: वाओ, दैट इज वाओ, हैवी.
0: हाउ प्रोफाउंड. इसका मतलब यही है कि लाइफ नेवर रन्स आउट ऑफ पाथ. पीपल सिंपली लूज करेज. इफ यू वांट टू लर्न टू स्विम, यू मस्ट स्टेप इनटू द वाटर. है कि नहीं?
1: या.
0: सो एनीवे, दैट वाज अ
1: थॉट. यू गॉट टू बी इन इट टू विन इट.
0: यू गॉट टू बी इन इट टू विन इट. या.
1: सिंपल एज दैट.
0: Oh, what we were talking about today, इस पर अगर यही होगा शायद. कहते कि कल की फिक्र और बीते काल का गम आज की खुशी छीन लेते हैं. आज को जियो क्योंकि यही जिंदगी का सबसे कीमती पल है. समझ गए? कल जो था वो चला गया. आगे भविष्य के लिए आप सोच रहे हैं कि वो भी मालूम नहीं मिलेगा मौका कि नहीं. लेकिन अभी इस पल जो आप जी रहे हैं दोस्तों, दिस इज द रियल रियल. यू आर एक्सपीरियंसिंग इट. है कि नहीं? सो या वरी अबाउट टुमारो एंड सोरो फ्रॉम यस्टरडे स्टील्स टुडेज हैप्पीनेस. ओके,
1: दैट्स ट्रू.
0: लिव टुडे बिकॉज दिस मोमेंट इज लाइफ मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट.
1: So what we

और चलिए, एक रिक्वेस्ट आया है और बड़ा प्यारा गाना है. ये जो गाना है इसका बोले माजी चल, किशोर कुमार आई थिंक सेंग दिस सॉन्ग, या किशोर कुमार जी आर डी बर्मन के संगीत पर. और ये गाना में यही कह रहे हैं कि ये जिंदगी एक दरिया है और हम सब उसकी कश्ती के मुसाफिर हैं, बस सफ़र चलता रहे. ठीक है, तो चलिए ओके, आई थिंक दिस इज अ वन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुन लेते हैं.

0: ओके, द सॉन्ग जो मैंने बोला था वो शायद गलत चॉइस था, लेकिन ये गाना जो है ये सही था। ओहो, माफ करना, ये जो गाना भी बजा यही गाना आप चाहते थे। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और चलो आगे चलते हैं दोस्तों, और कुछ स्कैमर्स पर बातचीत हो रही थी। लोग कॉल करेंगे, आपका सही नाम देंगे, एड्रेस देंगे, सब कुछ, लेकिन कहेंगे कि आपका डराएंगे आपको और फिर कुछ नंबर्स मांगेंगे आपको। प्लीज़ कभी ऐसा ना करना, कोई भी बैंक ऐसा नहीं करेगा। अभी एक टेलस्ट्रा वाला बहुत चला है दोस्तों, वो जो टेलस्ट्रा वाला है, प्लीज़ डाउट, जस्ट कॉल, एनी टाइम यू डाउट कॉल देम। और ये सब ये ऑनलाइन नहीं करेंगे, ठीक है? सो बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको पता चल जाना चाहिए अंदर से आएगा कि नहीं यार ये सही नहीं लग रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, बहुत लोगों के साथ स्कैम हुआ है और बहुत चीज आजकल बिकने लगे हैं, जैसे कि इंटरनेट अलग अभी चला, बहुत चल रहा है कि यू बाय दिस एंड इज फ्री फॉर लाइफ एंड यू नो यू गेट फास्ट इंटरनेट। एक वो है, अभी एक देख रहा हूं मैं, ब्रश कटा एक आया है, निकला यूट्यूब में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सीन इट। छोटी लड़की काट रही है उसके साथ, और व्हाट इट इज अ वेरी हाई स्पीड सो कटा, और व्हिच कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन ये सब जो है, आप थोड़ा सा केयरफुल रहे, ठीक है? जस्ट डोंट बाय एनीथिंग ब्लाइंडली। आई नो समटाइम इज वेरी टेम्प्टिंग, अच्छा चलो ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या करता है, बट डोंट डू दैट। ओके, बी वेरी केयरफुल।
1: ओके, आई वाज गोना से फ्रॉम द 1st of July there's going to be some new protections coming on from SMS and MMS scams. So from the 1st of July. So you're going to get, if it's coming from a registered sender, it'll display their verified sender ID. So that's how you know it is authentic or not. Okay?
0: But they will manipulate that too somehow.
1: I don't know. Well, at least they're trying to do something
0: about
1: it.
0: Yeah, well, at least.
1: Yeah. So anyone that's unregistered will display unverified,
0: yeah,
1: and it may not be a trusted sender. So just still I just feel do not press on a link. Simple as that. I think that's the safest way.
0: Yeah.
1: Hey, you.
0: This person,
1: okay,
0: sent me this laughing emoji.
1: Oh, God.
0: Because this is a person that was...
1: Let me see.
0: They responded to one of the things that they were selling online.
1: Oh.
0: And got the equipment. It didn't work. It reminds me of the story. A fantastic solar clothes dryer.
1: Okay.
0: Right?
1: Yeah.
0: Oh, it does wonders. It does wonders.
1: Mm.
0: Anyway, I won't say who ordered it. Somebody ordered it. This is going back about 15 years ago.
1: Clothes dryer.
0: Yeah.
1: Maybe it was you a piece ordered
0: of,
1: it.
0: It was a piece of
1: line.
0: Line. and six pegs.
1: Was it an April Fool's joke?
0: No. Totally legal.
1: But it's that's solar, true. It is solar. Yeah. Of course.
0: Yeah.
1: That is solar. Solar dryer.
0: I wonder how many millions this fellow must have made.
1: But see now, how innovative is he or she, whoever that was?
0: Yeah.
1: Well, it's a scam, but think about the thinking process behind it.
0: All these scammers and the people with that kind of
1: the play on words.
0: The people with that kind of mind can only think of those things.
1: Imagine if they put that mind to better use.
0: No, it won't work. Then it won't work. Okay.
1: Oh, boy.
0: Let's not go there. We know one already.
1: Hey?
0: Let's not go there.
1: All right.
0: Yeah.

0: जवानी। हाँ, क्या बात है, बहुत प्यारा गीत था दोस्तों। आजकल के
1: यू
0: गीत
1: मस्ट बी वेरी
0: में आई वॉज लिस्निंग टू
1: इम्प्रेस्ड।
0: चांदनी एंड शी सेड व्हाई शी प्लेज ओल्ड सॉन्ग बिकॉज न्यू सॉन्ग्स हार्डली हैव एनी मीनिंग्स नाउडेज। ओल्ड सॉन्ग्स हैड अ लॉट ऑफ मीनिंग्स एंड
1: यू टेंड टू गो बैक टू द ओल्ड वंस।
0: या बात भी सही है भैया, गाना देखो कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन्होंने विदाउट गोइंग इन डेप्थ। So, this is the reason why some songs are old is gold, they say.
1: That is true.
0: Okay. All right. Okay. How about I play this song?
1: Okay.

आईया करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु

0: ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक गाना जो शायद हमने रेडियो पे नहीं सुना होगा यहाँ पर, कभी प्ले भी नहीं किया होगा.
1: वाओ,
0: ऐसा लगता है.
1: ओके, लेट्स हियर इट. यप,
0: शायद होगा, आई डोंट नो. सुनते हैं.

0: ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों.
1: माय टेस्ट इज डिफरेंट टुडे फ्रॉम योर्स.
0: वी आर टू डिफरेंट पीपल.
1: Yeah, because I'm still like, I got Wednesday in my
0: Wednesday
1: in my
0: What do you want to do today? Wednesday?
1: Of course. Okay.

0: बिले बिले बिले बिले।
1: और इस समय दोस्तों बस 10 मिनट रह गए हैं 9 बजने में, और उसके बाद सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे दोस्तों। कार्यक्रम जरूर सुनिएगा, और चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल हम पुराने गीत लेकर आएंगे।
2: यस
1: ओके सो ऑलराइट।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर सताक्षी आपके साथ है आज एक बार फिर से इस नई शानदार सुबह में। देखिए, हर सुबह अपने साथ ढेरों रंग लेकर आती है, हाँ, लेकिन हम उन ढेरों रंगों में से अपने लिए कौन सा रंग चूज करते हैं वो तो भाई हम पे डिपेंड करता है। अब जिन्हें प्यार की जरूरत है वो रेड कलर चूज कर लीजिए, जिन्हें ग्रोथ की है वो ग्रीन कलर, और जिन्हें पीस चाहिए वो भाई व्हाइट कलर चूज कर सकते हैं। हाँ, जो नेगेटिविटी से भरे रहना चाहते हैं, लोगों से जेलस हैं, वो ब्लैक कलर अपने लिए चूज कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हम तो ये चाहते हैं कि आप रेनबो कलर चूज करें ताकि आपकी जिंदगी जो है वो कलरफुल रहे। हाँ, ब्लैक कलर की मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जगह होनी चाहिए, बस एक छोटी सी जगह हो कि आपकी खुशियों को नजर ना लगे, है ना। तो चलिए, वो ब्लैक टीका लगाना जरूर याद रखिएगा। हम आज इन्हीं कलर्स के साथ, जिंदगी के रंगों के साथ शुरू करते हैं एक बार फिर से हमारा और आपका इट हैपेंस वाला साथ। और इट हैपेंस पर आगे बढ़े उसके पहले ये अगला ट्रैक है, इसे सुनिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन 1701 FM।

वेलकम बैक इटापन सुन रहे आप सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर। और इसके पहले कि हम अपने इटापन के सफर में आगे बढ़े, ये वक्त है उन्हें विश करने का जिनके लिए ये पल बहुत ही खास है। जी हाँ, तो आज इनका बर्थडे है, जन्मदिन है, आज बहुत खुश हैं वो, और उनकी खुशी में, उनके इस दुनिया में आने की खुशी में हम भी खुश हैं, क्योंकि भाई आप नहीं होते तो हमारे लिसनरशिप कैसे बढ़ती। हाँ देखिए, हमें प्यार करने वाले कुछ लोग कम हो जाते ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो ब्रिस्वानी सुनने के लिए भी और इस दुनिया में आने के लिए भी। आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहे, बात रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, इसी विश के साथ विश कर दिया जाए उन्हें भी जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। सो भाई, ये साथ, ये एहसास जो है एक दूसरे के साथ होने का, ये ता उम्र यूं ही बरकरार रहे, इसी विश के साथ विश करते हैं उन्हें भी जिनके लिए है ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सबके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। Keep listening to Radio Brisbane 107.1 FM।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर और इट हैपेंस में आपके साथ सताक्षी है। जिस तरह से अगर खुद का घर बनाना हो तो आप पड़ोसी के नक्शे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपने घर का नक्शा खुद बनवाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी आप दूसरे किसी इंसान को कॉपी नहीं कर सकते, उसके नक्शे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको अपने आप को खुद ही ढूंढना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी खोज तब पूरी हो जाएगी जब लोग हमें गाइड कर देंगे या लोग हमें रास्ता दिखा देंगे, लेकिन अपना रास्ता हर इंसान को अपनी जिंदगी से हर इंसान को जो है वो खुद ही जुड़ना पड़ता है, अपना रास्ता हर इंसान को खुद ही बनाना पड़ता है। इसी बात पर एक और ट्रैक सताक्षी के साथ इट हैपेंस में एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी। जी हाँ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं।

सो वेलकम बैक। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ, इट हैपेंस को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ इस मॉर्निंग के कुछ बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग ट्रैक्स भी आप एंजॉय कर रहे हैं। सो आज की ब्रेकफास्ट रेसिपी क्या कहती है भाई? ऐसा पकाइए जो सबको टेबल तक खींच के ले आए, लेकिन लेकिन लेकिन कुछ ऐसा जो हेल्दी हो, है ना। और वैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एक हेल्दी डिश के साथ कुछ ऐसा हेल्दी ड्रिंक भी होना चाहिए जो आपकी मॉर्निंग को अमेजिंग बना दे। तो चाय कॉफी ये जो है ये डाइनिंग टेबल पर जरा अवॉइड कीजिए। भाई सुबह वाली कॉफी तो हो गई भाई, उसके बाद कुछ भी हेल्दी जैसे कि ग्रीन टी हो सकती है या फिर कोई बढ़िया सा जूस। हाँ, ताजा ताजा फलों का जब जूस आप पीते हैं सुबह, तो वो भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को जो है वो और बढ़ा देता है, है ना। तो बस हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफ को एंजॉय करिए और हेल्दी हेल्दी शो हमारा इट हैपेंस एंजॉय करते रहिए। एक और ट्रैक इसी बात पर सुनिए और सताक्षी के साथ बने रहिए इन मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर दोस्तों, और इट हैपेंस में ये वक्त है आज एक बार फिर से गानों की हैट्रिक का। तो गानों की हैट्रिक में आज तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हम आपके लिए कौन से लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं अभी ये पहला ट्रैक।

0: ग्रैंड मस्ती।
1: जी हाँ, गानों की हैट्रिक आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रिजु ब्रिस्वानी 1701 AM पर। गानों की हैट्रिक का ये रहा अगला ट्रैक।

की हैट्रिक रेडियो प्रस्थानी पर आप एंजॉय कर रहे हैं तीन बैक टू बैक ट्रैक्स में, ये है हमारा लास्ट ट्रैक। इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ गानों की हैट्रिक, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी रेडियो प्रस्थानी पर।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed, participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

लाइफ के प्रैक्टिकल होने पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वक्त है ना दोस्तों, ये धीरे धीरे गुजर रहा है और ये गुजरता वक्त हमें बहुत कुछ सिखा भी रहा है। कई बार हम कहते हैं कि अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, है ना। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सबका अच्छा सोचता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन देखा जाए तो ये हमेशा लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है। आज के वक्त में खासकर भाई AI का जमाना आ चुका है, अब चीजें बदली तो जरूर हैं। तो अगर आप किसी का अच्छा सोचते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको गिराने में, आपको पीछे ढकेलने में कई ऐसे लोगों का हाथ होता है जिनका एक्चुअली आपने अच्छा चाहा था, जिनका आप कभी आपने बुरा नहीं चाहा, वही है जो आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो देखिए ऐसा है कि इसका अच्छा सोचो, उसका अच्छा सोचो, ये अच्छा करो, वो अच्छा करो, ये जितना आप सोचेंगे उतना ही आप जो है वो जिंदगी में पीछे जाएंगे। मैंने शाहरुख खान का एक कोट सुना था, उन्होंने कहा था कि यार मैं हमेशा सबका अच्छा नहीं सोच पाता लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, है ना। तो अपना अच्छा सोचिए, बाकी किसी का बुरा मत सोचिए, बस जिंदगी की यही फिलॉसफी जो है ये आज के दौर में बढ़िया है। आइए एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ अभी इसी बात पर, और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।